0: morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
0: Rahul. Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
1: ए, अरे रे रे रे, वो देखो. Hi guys.
0: आओ. Hi.
1: कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चीना जैसी ना.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: और हाय रोबा, वो भी हो गया। अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना? फिर देखो।
1: चुप। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती।